0: जी, तो अब हम आपको लिए चलते हैं नशरियात के पहले वक्फे की जानिब, लेकिन आपने रहना है SBS उर्दू के साथ, क्योंकि जब हम वापस आएंगे तो गुफ्तगू रहेगी इस साल के बजट के असरात प्रॉपर्टी मार्केट पर किस तरह पड़ रहे हैं। तो SBS उर्दू के साथ रहिए, हम अभी हाजिर होते हैं।
1: Wendy's new Biggie Deals lets you choose whatever you're in the mood for. It's like a music mixing board of deals and you're the producer. Go with some chill folk music with a JBC in the $4 Biggie Bite snack. Try the drum and bass of deals with a double stack in the $6 Biggie Bag. Or go full on sandwich symphony with an $8 Biggie Bundle, the grand finale of snacking. And the best part? They all come with napkins! $4, $6, and $8 Biggie Deals how you want them. At Wendy's.
2: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit. I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
7: SBS Audio.
8: Play button दबाइए, नई दुनिया पाइए.
9: लाओ जी ऑस्ट्रेलिया,准备好了吗?
10: SBS Chill. Chill.
11: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
12: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
13: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
14: Far from the partisan politics.
8: 60 से ज़्यादा ज़बानों में खबरें, दिलकश मूसीकी, पसंदीदा पॉडकास्ट, सौ तो आहंग की दुनिया तक पहुँचने के लिए SBS Audio app डाउनलोड कीजिए.
10: sbs.com.au/audio.
0: SBS उर्दू की बराहे रास्त नशरियात में एक मरतबा फिर खुश आमदेद। मैं हूँ आपकी मेज़बान वर्दा वक़ार और ये नशरियात का दूसरा हिस्सा है, जिसमें हम बात करेंगे उस बजट की जो इस हफ्ते जारी किया गया है और जिसके बाद अवामी सतह पर ही नहीं बल्कि तहकीकी सतह पर भी और मुबस्सरीन के लिए भी ये समझना ज़रूरी हो गया है कि ये बजट क्या सहूलियात लेकर आया है और किन अफराद के लिए मुश्किलात में इजाफा हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के हालिया वफाकी बजट ने महंगाई, रिहायशी मसाइल, हिजरत और बढ़ती हुई ज़िंदगी के अखराजात के हवाले से अवामी सतह पर अहम बहस को जन्म दिया है। वहीं प्रॉपर्टी मार्केट भी जेर बहस है, जब से एंगस टेलर की जानिब से जवाबी तकरीर की गई है बजट के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के नौमान शहीर ने SBS उर्दू के पेशकार शादी खान सैफ से इस हवाले से खुसूसी गुफ्तगू सुनिए की है, सुनिए इस पॉडकास्ट में।
15: आप SBS उर्दू के साथ हैं।
16: ऑस्ट्रेलिया के नए वफाकी बजट ने महंगाई, हाउसिंग और माइग्रेशन के मुस्तकबिल पर नई बहस छेड़ दी है। वजीर खजाना जिम चालमर्स की जानिब से पेश किए गए इस बजट में आम लोगों के लिए क्या है? SBS उर्दू से गुफ्तगू में यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के नुमान शहीर ने बजट के अहम नुकात, सियासी पस मंजर और आम शहरियों पर मुमकिन असरात का तज्जिया पेश किया है। मैं हूं शादी खान सैफ।
17: तमाम के तमाम जो चेंजेस हैं बहुत ही आहिस्ता तरीके से बजट के अंदर शामिल की गई हैं। अगर ये बहुत तेजी के साथ लाई जाती तो फिर कुछ उम्मीद थी, लेकिन इस कंडीशन में ये भी था कि प्रॉपर्टी मार्केट भी बहुत बुरी तरह से क्रैश कर जाती और हाउसेस की प्राइसेस 20-30% नीचे गिर जाती, तो वो ऐसा भी नहीं करना चाह रहे थे। दूसरा, क्योंकि देखिए कैपिटल गेन टैक्स उस टाइम मिलेगा ना जब लोगों को कैपिटल गेन हो रहा हो, अगर आपने प्रॉपर्टी मार्केट ही क्रैश कर दी तो फिर तो कैपिटल गेन ही नहीं बचा, जब कैपिटल गेन ही नहीं बचा तो फिर तो आप टैक्स भी नहीं ले सकते। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को बड़े ख्याल से एक चीज काटनी थी कि प्रॉपर्टी मार्केट भी ना गिरे, टैक्स भी मिलता रहे, उसके साथ साथ थोड़ा सा जो है वो आवाम को रिलीफ मिल जाए। तो अब इसमें इन लोगों ने दो गोल्स अचीव किए हैं। प्रॉपर्टी मार्केट तो इतनी नहीं गिरेगी क्योंकि वो जो चेंजेस जो लोग लेकर आ रहे हैं वो अगले 5-10 साल में कहीं जाके इंप्लीमेंट होंगे, प्रॉपर्टी मार्केट नहीं गिरेगी। हाउसेस की प्राइसेस भी ज्यादा गिरेंगी नहीं, तो मतलब स्टेबल ही रहेंगी, तो उसका मतलब जिन्हें पहले कैपिटल गेन हो रहा था उनका अभी भी होगा और वो टैक्स देंगे तो टैक्स भी बचेगा। अब तीसरा सवाल यह है कि क्या इससे आवाम को रिलीफ मिलेगा, क्या घर बाय करना आसान हो जाएगा? ये एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और इसमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा अभी फिलहाल मुमकिन नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो पुराना इन्वेस्टर है उसको तो अभी भी इंसेंटिव है, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव गियरिंग भी चल रही है, उसका कैपिटल गेन टैक्स का भी इतना मसला नहीं है, तो वो इन्वेस्टर तो अभी भी इन्वेस्टमेंट पे लगा रहेगा। जो नया इन्वेस्टर है वो अब डिस्करेज होगा, वो अब जाएगा नई बिल्डिंग्स की तरफ, पुरानी बिल्डिंग्स की तरफ वो नहीं जाएगा, तो वो पुराने इन्वेस्टर के हाथ में ही रहेंगी। अब यहां पे बड़ा रोल आते हैं उन लोगों का जिनके पास पहले बहुत सारा पैसा है और वो मजीद प्रॉपर्टीज बाय करके अपने पास रख सकते हैं। तो ये एक मुमकिन है कि ये लोग जो है मार्केट में बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, प्रॉपर्टी बाइंग परचेजिंग फर्म्स हैं, उनके पास बहुत पैसे हैं, वो लोग इन हाउसेस को जब बाय करेंगे तो आम इंसान जो है उसकी बहुत सारी चीजें और दूर हो जाएंगी। अब यहाँ पे जो तीसरा मसला यहाँ पे आ रहा है वो क्या आ रहा है कि जब नेगेटिव गियरिंग होती थी तो जो भी घरों के मालिक थे उनको एक उम्मीद ही होती थी कि हम लोग जो है वो कुछ पैसे हमें गवर्नमेंट से मिल जाएंगे, तो किराए जो थे वो यहाँ पे काफी स्टेबल थे, मतलब इतने ज्यादा तेज से नहीं पड़ते थे ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन उसके बाद अब जब उनके पास ये उम्मीद नहीं रहेगी कि कोई बात नहीं 10,000 का लॉस हो गया तो गवर्नमेंट से मुझे 10,000 मिल जाएंगे, अब उनको फिर करना पड़ेगा कि भाई किराया इतना बढ़ाया जाए कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर मुझे जो है वो प्रॉफिट हो, क्योंकि अब वो टैक्स वाला बेनिफिट उनके पास से चला गया। तो किराए के बढ़ने की उम्मीद बहुत ज्यादा है और जब किराए बढ़ेंगे तो उसका मतलब लोगों के लिए पैसे बचाना और मुश्किल हो जाएगा, 5%, 10%, 15% बचाना लोगों के लिए और मुश्किल होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से घर लेना और मुश्किल होता चला जाएगा लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज है जिसकी हम उम्मीद रख सकते हैं, वो उम्मीद हम ये रख सकते हैं कि एटलीस्ट हर साल जो 10-20% इन्वेस्टर अब बाय नहीं करेगा, और उम्मीद यह भी है कि जो पुराना इन्वेस्टर है वो ज्यादा एग्रेसिव नहीं होगा, वो ज्यादा बाइंग शुरू नहीं कर देगा, तो उसमें फिर उम्मीद यह है कि थोड़ा सा जो हाउसिंग अवेलेबिलिटी है वो उसमें इजाफा हो जाएगा। तो वो लोग जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर है, जो कि मतलब जिन्होंने 3 साल बाद देना था वो शायद 1 साल लेने पे कामयाब हो जाए, लेकिन वो लोग जो अभी स्टार्ट कर रहे थे, जैसे आपने माइग्रेंट कम्युनिटी की बात की, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जो डिपॉजिट लेना स्टार्ट किए हैं, अब अगर रेंट बढ़ता है तो उन लोगों के लिए डिपॉजिट बचाना बहुत मुश्किल हो होगा।
16: अच्छा ये बताइए नुमान साहब, क्या ये जो इनका बजट है, क्या ये वाकई में इनका एम आपकी नज़र में यही रिफॉर्म्स हैं या इट्स मोर ऑफ अ पॉलिटिकल स्टंट फॉर द अपकमिंग इलेक्शन?
17: देखिए हर इसको हम इस तरह से अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि हर रिफॉर्म एक पॉलिटिकल स्टंट ही होता है और डेमोक्रेसी में यही मकसद, मतलब डेमोक्रेसी का मकसद क्या है कि हम आवाम के हिसाब से, चल आवाम को हम खुश कर दें, ये आपका मकसद होता है। अब जब आवाम को खुश करते हैं तो पॉलिटिकल स्टंट भी होता है, तो आप रिफॉर्म जरूर करते हैं, लेकिन ये रिफॉर्म वो होता है जो आवाम को खुश कर सके, आवाम जिससे एग्री हो सके, आवाम जिससे मुत्तफिक हो सके। अब यहाँ पे आप देखें तो थोड़ी सी आपको अगर पॉलिटिक्स आप देखें तो आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया एक थोड़ा सा सोशलिस्ट मुल्क है, तो यहाँ पे इस तरह के नारे बहुत चलते हैं कि गरीबों को अमीरों से ले लो, गरीबों में बांट दो, इस तरह के नारे यहाँ बहुत चलते हैं। अगर आप पाकिस्तान से, शायद आपको अंदाजा, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के जमाने में इस तरह के नारे दिए थे, तो यहाँ पे इस तरह के नारे चलते हैं। तो जब भी आप ज्यादा आबादी के ऊपर टैक्स लगाएंगे, जो हमारी एक हाई इनकम तबका है उसके ऊपर आप टैक्स लगाएंगे, तो लो इनकम तबका जो है वो उसको पॉजिटिवली ही देखेगा, वो उसका ख्याल है कि जब टैक्स लगेगा तो फिर मेरी हेल्थ फैसिलिटीज मुझे ज्यादा मिलेंगी, मेरे स्कूल बेहतर हो जाएंगे, मेरे अस्पताल बेहतर हो जाएंगे।
16: क्या ऐसा स्टैंड अप या नोटेबल पॉइंट था इस बजट में जो हम कह सकते हैं कि मल्टीकल्चरल कम्युनिटीज, माइग्रेंट्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा उन पर असर डाल सकता है या उनके हवाले से ज्यादा अहम है?
17: सबसे अहम चीज जो इसमें आई है वो NDIS को कंट्रोल करने की बात की गई है। उसमें इन लोगों ने बेसिकली, आप देखिए फिर मैं वही बात करूंगा कि इन हुकूमतों ने अपना क्रेडिट कार्ड जो है वो ओवर यूज कर चुकी हैं ये हुकूमतें, अब इनको पैसे चाहिए उस बैंक अकाउंट को भरने के लिए जो बड़ी तेजी के साथ खाली हो रहा है, तो इन लोगों ने कट्स लगाए हैं। अब इसमें एक बहुत अच्छी चीज जो हुई है जो माइग्रेंट कम्युनिटी के लिए अच्छी है कि ज्यादातर कट्स गए हैं एज केयर्स की तरफ और बूढ़े ऑस्ट्रेलियंस की तरफ, लेकिन ज्यादातर इन्होंने माइग्रेंट्स के ऊपर ज्यादा जोर नहीं दिया, जो कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है माइग्रेंट्स कम्युनिटी के लिहाज से।
14: ये पॉडकास्ट आपके लिए शादी खान सैफ ने पेश किया था।
18: लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तबसरा कीजिए, फेसबुक पर SBS उर्दू फॉलो कीजिए।
0: जी सामईन, तो इसके साथ ही नशरियात में शामिल करते हैं मौसीकी का एक और रंग। आपको कोक स्टूडियो का तिनक थिन सुनवाते हैं अली सेठी, अली हमजा और वकार एहसान की आवाज़ में।

0: जी सामईन, तो इसके साथ लेते हैं नशरियात का तीसरा और आखिरी वक्फा। वक्फे के बाद जब हम लौटेंगे तो हम मिलकर ये जानेंगे कि खेलों की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। तो SBS उर्दू के साथ रहिए, हम अभी हाजिर होते हैं।
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
0: सुनिए मुनफरिद कहानियाँ किसी भी मोबाइल डिवाइस से। मुफ्त विजिट कीजिए sbs.com.au/urdu या अभी डाउनलोड करें SBS ऑडियो ऐप। SBS ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड कीजिए और अपने पसंदीदा तमाम प्रोग्राम सुनिए। गूगल प्ले या ऐप स्टोर से SBS ऑडियो ऐप मुफ्त हासिल करें। खुश आमदेद सामईन, SBS उर्दू की براہ راست نشریات آپ سن رہے ہیں SBS ساؤتھ ایشین پر، اور نشریات کے اس حصے میں میں وردہ وقار آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہہ چکی ہوں، اور اب میں آپ کو لے چلوں گی کھیلوں کی دنیا میں، جہاں ہم مل کر جانیں گے کہ کیسے دو پاکستانی خواتین سیلنگ کے میدان میں پاکستانیوں کے لیے راہ ہموار کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کرکٹ کے میدان کی ہلچل اور کراٹے کی دنیا کا احوال بھی SBS اردو کے سامعین کے لیے لائے ہیں حافظ محمد بلال۔ खेलों की रिपोर्ट में मिलकर सुनते हैं।
5: यकीनी बनाइए कि आपको सिर्फ वो खबरें ना मिलें जो सोशल मीडिया फीड आप तक पहुंचाना चाहता है, बल्कि आपको खबरों के हर जाविये का इल्म हो। हमारी तमाम खबरें और कहानियां जानने के लिए आज ही अपने वेब ब्राउजर पर SBS उर्दू की वेबसाइट को बुकमार्क करें sbs.com.au/urdu। आप SBS उर्दू के साथ हैं।
6: SBS उर्दू के लिए मैं हूं हाफिज मोहम्मद बिलाल। आज खेलों की खबरों का आगाज करेंगे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के दौरे पाकिस्तान से। जी सामान, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने नौजवान और नए खिलाड़ियों पर मुश्तमिल स्कोर के साथ रवा माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। अलेक्स कैरी, कैमरोन ग्रीन, मार्नस लबूशन और एडम जम्पा समेत दीगर अहम खिलाड़ी शामिल। इसके अलावा रायली मेरेडिथ और बिली स्टेन लीक भी टीम में वापसी हुई है, जबकि पैट कमिंस, मिचेल स्टॉक और जोश हेजलवुड को आराम दिया गया है। वनडे मैचेस 30 मई को रावलपिंडी जबकि 2 और 4 जून को लाहौर में खेले जाएंगे। अब बात करेंगे बांग्लादेश ने पाकिस्तान को एक और टेस्ट में हरा दिया। जी सामाइन, ढाका में पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 104 रन से शिकस्त दी। कप्तान शान मसूद ने कहा कि किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, शिकस्त की जिम्मेदारी खुद लूंगा, बतौर कप्तान कोशिश करता हूं चीज़ों को बेहतर करूं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के नजमुल हसन शांतू और मोमिनुल हक ने अच्छा खेल पेश किया। हमें लगता है कि मोमिनुल हक और शांतू की पार्टनरशिप की वजह से मैच हाथ से निकल गया। आइए आपको कप्तान शान मसूद की गुफ्तगु सुनाते हैं।
7: टेस्ट क्रिकेट में काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें बेहतर करनी पड़ेंगी। मैं कभी भी किसी पे ब्लेम गेम नहीं खेलूंगा, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन मेरी हमेशा ये कोशिश है कि हम एज ए टेस्ट टीम क्या चीज़ें अच्छी कर रहे हैं, क्या चीज़ें बेहतर कर सकते हैं और क्या चीज़ें हमें मज़ीद बेहतर करनी है एक अच्छी टेस्ट टीम बनने की। अगर मेरे आप इंटेंशंस का पूछें, मेरे प्योर इंटेंशंस उसी तरफ हैं, चाहे वो टीम सिलेक्शन हो, चाहे वो खेलना हो, चाहे वो अपनी बैटिंग पोजीशन हो, चाहे वो कोई भी टीम रिलेटेड कोई चीज़ हो। तो इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो पाकिस्तान टीम किस तरीके से बेहतर हो सकती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि टेस्ट क्रिकेट आपका बेस्ट मांगती है, टेस्ट क्रिकेट में आप कभी भी किसी वीकर ऑपोजिशन से नहीं खेलते, टेस्ट क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जिसमें बेस्ट वर्सेस बेस्ट होता है, और जहाँ भी आप मिस्टेक्स करेंगे उन मिस्टेक्स आपको मिस्टेक्स का मार्जिन नहीं मिलेगा. 100% आई थॉट एज अ बॉलिंग यूनिट आई नेवर लाइक इट्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ टीम एफर्ट सो आई नेवर से दैट the bowling went wrong or the batting went wrong but as a bowling unit as a team we felt that twice we bowled really well in the first hour we got two early wickets and that's what you want the middle order to face the harder ball conditions where the bowlers are on top and twice I think you have to give credit to Shanto and Mominal for batting well but as a bowling unit that's where we'll feel that we let the game slip away.
6: अब बात करेंगे जर्मनी में पाकिस्तानी कराटे फाइटर राजा रेहान ने गोल्ड मेडल जीत लिया. जी सामिन, पाकिस्तानी नौजवान कराटे फाइटर राजा रेहान ने जर्मनी में होने वाले मरूफ इवेंट में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया. राजा रेहान ने पहली फाइट में एंगो शेफर को 6-0, सेमीफाइनल में मार्सल कोच को 1-0, जबकि फाइनल में तैमूर मानिफ को 9-0 से शिकस्त देकर इवेंट जीत लिया. इनके ये कामयाबी ना सिर्फ मेहनत और लगन का सबूत है बल्कि बैरून मुल्क पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रही है. SBS से खसूसी गुफ्तगू में क्या कहा आपको सुनाते हैं.
8: मैंने 2024 में जर्मन नेशनल चैंपियन बनने का टाइटल अपने नाम किया. उसके अलावा यूरोपियन चैंपियनशिप में मैंने जर्मनी के लिए सिल्वर मेडल हासिल किया. इसके अलावा भी मैं बहुत सारे टाइटल अपने नाम कर चुका हूँ और हाल ही में होने वाली इंटरनेशनल चैम्पियनशिप जो कि जर्मनी में मनाकिद हुई उसमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया. ये जितनी भी मेरी कामयाबियाँ हैं इसका मैं क्रेडिट देना चाहूँगा अपने तमाम कोचेस को, ख़ास तौर पर मेरी वाइफ जो कि मेरी कोच भी हैं. उन्होंने मेरे पे बहुत मेहनत की क्योंकि मेरी फिजिक से लेके मेरी सारी चीज़ों को वही देखती हैं, और उसके अलावा मेरे वालदैन जिनकी दुआएँ हमेशा मेरे साथ रहती हैं. तो अब मेरा जो टारगेट है वो ये है कि 2026 में अगेन अपने टाइटल को वापस लेना, और उसके अलावा जितनी भी चैम्पियनशिप्स आ रही हैं इंटरनेशनल उसके लिए मैं अपनी अपने आप को प्रिपेयर करना मेरा टारगेट है. और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं ये टाइटल अपने नाम करके ना कि सिर्फ जर्मनी का बल्कि पाकिस्तान का भी नाम रोशन करूंगा.
6: अब आखिर में बात करेंगे सेलिंग में पाकिस्तान की दो खवातीन ने नई तारीख रकम कर दी. जी सामिन, पहली बार पाकिस्तान की दो सेलर्स जोया असद अली और महनाज जमील ने इंटरनेशनल सेलिंग जजिस कोर्स कामयाबी से मुकम्मल कर लिया. दोनों ने थाईलैंड में होने वाले वर्ल्ड सेलिंग के इंटरनेशनल सेमिनार में शिरकत की और बाद हज़ार इम्तहान में शानदार नंबर्स के साथ कामयाबी हासिल की. अब दोनों को आइंदा चार साल में 3 इंटरनेशनल इवेंट्स में शिरकत भी करना होगी. SBS से खसूसी गुफ्तगू में दोनों ने अपने तजर्बात और खुशी का इजहार किया.
9: ये जो इंटरनेशनल जजिंग सेमिनार में मैंने एग्ज़ाम पास किया है, काफ़ी मुश्किल एग्ज़ाम होता है. मुख्तलिफ तरह के इसमें 4 सेक्शंस होते हैं और चारों सेक्शन में आपको पास होने के लिए 80% से अबव लेने होते हैं. सपोर्ट जो है वो बहुत सारे लोगों की है. इस तरह का काम अकेले बिल्कुल नहीं हो सकता. सबसे बड़े मेरे सपोर्टर जो मेरे जिन्होंने मुझे सेलिंग सिखाई भी, जो मेरे कोच भी थे, कैप्टन अब्दुलरहमान अरशद, और वो पाकिस्तान के वाहिद इंटरनेशनल रेस ऑफिसर हैं. बाकी ये कि जब मैं इवेंट्स में जाती हूँ बाहर मुख्तलिफ ममालिक में, एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जब वहाँ मुख्तलिफ इन मुल्कों के झंडों के साथ जब पाकिस्तान का झंडा लगाया जाता है इस वजह से कि पाकिस्तान की एक ऑफिशियल उस जूरी में है, तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है, बहुत फ़ख्र होता है. बस वो बयान नहीं कर सकती मैं फीलिंग कि वो कैसी होती है. तो मेरी बस यही कोशिश है कि इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द अपने ये मराहिल कंप्लीट करके इंटरनेशनल जज बनूं.
10: पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मेरा ये क्वालिफिकेशन लेने का मकसद ही ये था कि मैं पाकिस्तान की सीलिंग कम्युनिटी के काम आऊँ. पाकिस्तान में जब कोई और जज है ही नहीं तो फिर हमें अपने बड़े कॉम्पिटिशन्स के लिए बाहर से जजेस को बुलाना पड़ता है. अगर हमारा कोई रूल्स के लिहाज से कोई हमारा सवाल हो तो हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. उसका जवाब ढूंढने के लिए हमें काफ़ी सारे लोगों से जा के पूछना पड़ता है. तो मेरा मकसद यही था कि पाकिस्तान की सेलिंग कम्युनिटी के लिए थोड़ी और आसानियां पैदा करने के लिए, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं ये कर पा रही हूँ.
6: SBS اردو کے لیے میں ہوں حافظ محمد بلال.
5: لائک کیجیے, شیئر کیجیے, تبصرہ کیجیے, فیس بک پر SBS اردو فالو کیجیے.
0: جی سامعین, اسپورٹس رپورٹ آپ نے سنی اور ہم نے یہ جانا کہ کھیلوں کے میدان میں کیا ہو رہا ہے. یہاں یہ یاد دہانی ضروری ہے کہ SBS اردو کی براہ راست نشریات ہر بدھ اور جمعے کو آسٹریلین مشرقی وقت کے مطابق سپہر 3 بجے SBS ساؤتھ ایشین پر نشر ہوتی ہے. بدھ کا پروگرام SBS 2 پر شام 6 بجے اور جمعے کا پروگرام SBS 2 پر اتوار کو شام 6 بجے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ یہ پروگرام شام کو SBS 2 پر سن رہے ہیں تو کچھ خبریں تبدیل ہو سکتی ہیں. تازہ معلومات کے لیے sbs.com.au/urdu پر جائیے. اس کے علاوہ SBS اردو انسٹاگرام, فیس بک اور یوٹیوب پر بھی موجود ہے. آپ کچھ طویل دورانیے کی ویڈیوز ہیں جو یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں. فیس بک پر آپ سن سکتے ہیں اپنی پسند کی منفرد کہانیاں اور روزانہ کی خبریں بھی, جبکہ انسٹاگرام پر آپ SBS اردو کے پیج پر جا کر اپنی پسندیدہ سیلیبریٹیز کے انٹرویوز سن سکتے ہیں, انفلوئنسرز کے انٹرویوز سن سکتے ہیں اور کیا کچھ SBS میں ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی اپڈیٹس آپ کو وہیں مل سکتی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پیغام بھیجیں اور ہمیں یہ بتائیں کہ نشریات میں ہم کیسی موسیقی شامل کریں, یا وہ کون سے موضوعات ہیں جن کا ہم احاطہ کریں, یا وہ کون سی منفرد کہانیاں ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں, یا اگر آپ کے اپنے پاس بھی کوئی ٹیلنٹ موجود ہے یا کوئی آپ کی بھی منفرد کہانی ہے جو آپ SBS اردو کے سامعین سے شیئر کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ہمیں پیغام بھیج سکتے ہیں SBS اردو کے فیس بک پیج کے ذریعے. تو ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی نشریات ہوتی ہے اختتام پذیر. اپنی میزبان وردہ وقار کو دیجئے اجازت, فی امان اللہ, لیکن جاتے جاتے آپ سنتے جائیے حمدیہ کلام. اللہ حافظ.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर. शुक्रवार 15 मई 2026 का दिन और SBS के हिंदी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आपको अनीता बरार का नमस्कार. सबसे पहले कि आज हम जिस भूमि से इस कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं उसके पारंपरिक उत्तराधिकारियों को स्वीकार करते हैं. SBS हिंदी कुलीन राष्ट्र के वारंजेरी लोगों, उनके अतीत और वर्तमान के बुजुर्गों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता है. हम उन सभी मूल निवासियों और टॉरस स्ट्रेट आइलैंड के पारंपरिक उत्तराधिकारियों का भी सम्मान करते हैं जिनकी भूमि से आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं. श्रोताओं, आज कार्यक्रम में हम नजर डाल रहे हैं बजट पर विपक्ष का जवाब. जानेंगे कि बढ़ती महंगाई में किस चीज के दामों पर, घर के बजट पर असर है हम सब पर. भारत की रिपोर्ट तो कार्यक्रम का हिस्सा होती ही है और इसके अलावा चलेंगे भारत के एक दर्शनीय स्थल की तरफ. कौन सा होगा वो स्थल, उसके बारे में कुछ आगे बात करती हूँ. अभी पहले न्यूज फ्लैश. नमस्कार, शुक्रवार 15 मई के लिए यह न्यूज फ्लैश और मैं हूँ अनीता बरार. हंटर वायरस के जानलेवा प्रकोप की चपेट में आए क्रूज शिप पर सवार 6 लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं. 4 ऑस्ट्रेलियाई नागरिक, एक परमानेंट रेसिडेंट और एक न्यूजीलैंडर आज दोपहर पर्थ के पास पियर्स रैफ बेस पर उतरे और अब बेस के पास एक खास तौर पर डिजाइन की गई जगह पर 3 हफ्ते के लिए क्वारंटीन में हैं. एक नियो नाजी ग्रुप ऑस्ट्रेलिया में एंटी हेट कानून के तहत पूरी तरह से गैर कानूनी घोषित होने वाला दूसरा ग्रुप बन गया है. गृह मंत्री टोनी बर्ग का कहना है कि उन्हें एक बैन ग्रुप के तौर पर लिस्ट करना एक गंभीर कदम है. इसे सिर्फ एजियो ही शुरू कर सकता है, जिसे ये यकीन दिलाना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा काम किया है जिससे हिंसा का खतरा बढ़ जाएगा. ऑस्ट्रेलिया में नियोनाजी ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें यूरोपियन ऑस्ट्रेलियन मूवमेंट, नेशनल सोशलिस्ट नेटवर्क और वाइट ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, जो एक राजनीतिक पार्टी है. मंत्री का कहना है कि पिछले साल खत्म करने के प्लान की घोषणा के बावजूद अलग अलग नामों से सक्रियता जारी है. ईरान ने भारत में ब्रिक्स ग्रुप के देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग के दौरान उनसे यूएस और इसराइल के हमले की निंदा करने की अपील की है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का कहना है कि तेहरान वाशिंगटन और इसराइल के गैर कानूनी हमलों का शिकार है. ब्रिक्स के बढ़े हुए ग्रुप में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं. नई दिल्ली में हो रही बातचीत में मिडिल ईस्ट में संघर्ष और हॉर्मुज स्ट्रेट में शिपिंग में रुकावटों की चिंताओं पर ध्यान दिया जा रहा है. क्वींसलैंड में पुलिस का कहना है कि टूरिस्ट बस क्रैश के कारण के बारे में अभी अंदाजा लगाना जल्दबाजी होगी. इस हादसे में एक महिला की मृत्यु हो गई. सुपरिटेंडेंट डीन कैवना का कहना है कि चार्टर बस ब्रूस हाईवे से उतर गई और क्रैश के दौरान पलट गई. 19 लोगों को हॉस्पिटल में ले जाया गया और कम से कम एक को जानलेवा चोटें आई हैं. ऐसी खबरें हैं कि नॉर्दर्न टेरिटरी में डिफ्थीरिया से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है. इस साल की शुरुआत में इस बीमारी के फैलने की घोषणा की गई थी. सेंट्रल ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल कांग्रेस के पब्लिक मेडिकल ऑफिसर जॉन बोफा ने एबीसी न्यूज़ को बताया कि ये मौत कुछ हफ्ते पहले एक दूर के इलाके में हुई थी. ऑस्ट्रेलिया में डिफ्थीरिया से आखिरी मौत 2018 में हुई थी और टेरिटरी में अभी जो फैल रहा है वो 1990 के दशक के बाद पहली बार है. वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड और साउथ ऑस्ट्रेलिया में भी मामले सामने आए हैं. और एनडीटीवी से मिले समाचार के अनुसार भारत नीट 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने दावा किया है कि पेपर एनटीए के अंदर से लीक हुआ है। इस मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सीबीआई ने दिल्ली की अदालत को बताया कि पेपर लीक की कड़ी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के अंदर तक जाती है। सीबीआई को करोड़ों के सौदे के डिजिटल सबूत मिले हैं। जांच से असली मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश जारी है। अन्य समाचारों और समुदाय के समाचारों के लिए आप हमारी फेसबुक और हमारे वेब पेज sbs.com.au/hindi से जुड़े रहें। न्यूज फ्लैश समाप्त हुआ। और शुरू न्यूज फ्लैश के बाद अब भारत से हमारे संवाददाता विश्व रत्न के साथ भारत से ये रिपोर्ट।
2: ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हो रही है। गुरुवार से शुरू हुई इस बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे हैं। अपने शुरुआती संबोधन में जयशंकर ने वैश्विक हालात के मद्देनजर इस बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
3: We meet at a time of considerable flux in international relations, ongoing conflicts, economic uncertainties, and challenges in trade and technology and climate are shaping the global landscape. There is a growing expectation, particularly from emerging markets and developing countries, that BRICS will play a constructive and stabilizing role. In this background, our discussions today are an opportunity to reflect on global and regional developments and to consider practical ways to strengthen our cooperation.
2: Shanti aur suraksha ki wakalat karte hue S. Jaishankar ne kaha,
3: Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बैठक में भाग ले रहे ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के साथ मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए साथ मिलकर काम करने की वकालत की। आज बैठक का आखिरी दिन है। इधर प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। आज इस यात्रा का पहला पड़ाव संयुक्त अरब अमीरात होगा। ऊर्जा सुरक्षा के लिए इस दौरे को महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री 4 यूरोपीय देशों की यात्रा पर चले जाएंगे। जहां कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर सवाल खड़ा करती रही है, तो भाजपा राहुल गांधी के विदेश दौरों पर सवाल उठा रही है। गुरुवार को भाजपा ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दौरे की फंडिंग पर सवाल खड़ा किया। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा इन यात्राओं के बारे में कहते हैं,
4: एलओपी के ऊपर एक बहुत गंभीर प्रश्न को छोड़ता है, उनके व्यवहार, उनका आचार। जो व्यक्ति भविष्य में प्रधानमंत्री बनना चाहता है, उस व्यक्ति का आचार, कौन उनको बुला रहा है, किस उद्देश्य से वो ओमान गए, वहां वो किससे मिले, देश के विरोध में उन्होंने क्या बातें की, क्या षड्यंत्र उन्होंने रचा। ऐसा नहीं है कि भारत की सरकार छोड़ देगी। ये नया भारत है, चारों तरफ सिक्योरिटी कैमरे लगे हैं, एक एक चीज की गिनती और हिसाब हो रहा है। आज तो हमने एक छोटा सा लेजर जारी किया है, मगर कागजों की भरमार है और तथ्यों की भरमार है, छोड़ा नहीं जाएगा।
2: इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पार्टी ने इसे भाजपा की कुंठा कहा है। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा अनर्गल आरोप लगा रही है। वीडी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री होंगे। सोमवार से वे राज्य की कमान संभालने जा रहे हैं। 4 मई को आए विधानसभा चुनाव परिणाम में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को बड़ी बहुमत हासिल हुई थी, लेकिन विधायक दल का नेता चुनने में कांग्रेस पार्टी को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। गुरुवार को आखिरकार सतीशन के पक्ष में यह घोषणा हो गई। कांग्रेस नेता दीपा दास मुंशी इस बारे में कहती हैं,
5: द कांग्रेस प्रेसिडेंट has held extensive discussions with the chairperson of the Congress Parliamentary Party, leader of the opposition in the Lok Sabha, the AICC observers who had met with the newly elected MLAs on May 7th, 2026, and many other leaders from the state, including MPs, former PCC presidents, have all also been consulted. Based on all these discussions, it has been decided that Shri V.D. Satishan be appointed as the leader of the CLP.
2: भारत ने ओमान तट पर भारतीय झंडे वाले जहाज पर हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को आधिकारिक बयान में कहा कि इस तरह के हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि बुधवार को जहाज पर हमला हुआ था, इसमें सवार सभी 14 सदस्यों को बचा लिया गया। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल ने इस बारे में बताया।
6: That is actually made of wood and named Haji Ali, during its voyage from Somalia to Sharjah, UAE, reportedly encountered an attack incident in Omani waters in early hours of 13th May 2026, which led to fire on board and subsequent sinking of the vessel. All 14 crew members on board were safely rescued by the Omani Coast Guard and have reached Dibba Port, that is Oman. The crew is reported to be safe and necessary formalities with the local authorities have been completed. Government of India remains in close coordination with the authorities in the Sultanate of Oman, Indian Mission officials and relevant maritime agencies.
2: आज की सुबह आम जनता को महंगाई का जोर का झटका लगा है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में वृद्धि कर दी गई है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल में 3-3 रुपए के लगभग वृद्धि की है, जबकि सीएनजी के दामों में 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ेगा। महंगाई के और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। वैसे पेट्रोल डीजल की खपत को कम करने के लिए सरकार पिछले कुछ दिनों से लोगों से आग्रह कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से पेट्रोल कम उपयोग करने को कहा था। कई मंत्रियों और राज्य सरकारों ने इस दिशा में कुछ कदम भी उठाए हैं। मेरा भारत मेरा योगदान कैंपेन के तहत दिल्ली सरकार ने कुछ बड़े फैसले किए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस बारे में कहती हैं।
7: ईंधन बचाने के लिए प्लेज होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने के लिए प्लेज होगा, अननेसेसरी जो व्हीकल यूज है, पर्सनल प्राइवेट व्हीकल जो यूज है उसका काम करने के लिए प्लेज होगा। इस पूरे अभियान को चलाया जाएगा, उसमें कार पूल हो, कार शेयरिंग हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो, इस पे सरकार मैक्सिमम काम करेगी, इसको बेहतरीन व्यवस्थाएं दिल्ली राज्य को देने के लिए काम करेगी।
2: आपको बता दें कि विपक्षी दल पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर पहले से ही सरकार पर हमलावर हैं। इसके पहले एलपीजी सिलेंडरों के दामों में भी वृद्धि की गई थी। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
1: श्रोताओं, भारत से आप ये रिपोर्ट सुन रहे थे। और जानते हैं ना कि ये सप्ताह जो है वो नेशनल फैमिलीज वीक है ऑस्ट्रेलिया में। आज यानी 15 मई का दिन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपके लिए इस दिन का क्या महत्व है अवश्य लिखिएगा मुझे 0439-799-767 पर, और मैं आपसे मिलती हूँ इस अंतराल के बाद।
8: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
9: Starting a new life in Australia isn't easy.
10: A lot of companies have rejected me.
11: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
9: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
12: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
13: Hi, I'm Janice Peterson from SBS World News. And I'm here to help you improve your English pronunciation. This short lesson is only about 5 minutes, so you can easily fit it into your day, perhaps on your lunch break.
14: SBS Learn English helps Australians speak, understand and connect.
1: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार. दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम आगे बात करेंगे कि बढ़ती महंगाई में वो क्या है जो घरेलू बजट पर खासा असर डाल रहा है, और भारत की एक जगह के बारे में भी जानेंगे जिसे कहते हैं अरब सागर का मोती. कौन सी होगी वो जगह? आप मुझे लिखिएगा 0439799776 पर कि भारत में किस जगह को अरब सागर का मोती मानते हैं. और अभी बात करते हैं बजट पर, यानी विपक्ष के नेता द्वारा इस पर क्या जवाब दिया गया और क्या क्या ऐलान किए गए. तो आइए जानते हैं विस्तार में इन सब के बारे में. इस रिपोर्ट को प्रस्तुत कर रही हैं स्वाति शर्मा.
15: नमस्कार, SBS हिंदी पर मैं हूँ स्वाति शर्मा. संसद में अपना पहला बजट रिप्लाई पेश करते हुए ऑपोजिशन लीडर एंगस टेलर ने हाउसिंग, माइग्रेशन और टैक्स पर फोकस किया, और सबसे बड़ा ऐलान था माइग्रेशन को सीधे हाउसिंग से जोड़ना.
16: First, mass migration is changing Australia for the worse. The number of people coming in far exceeds the number of houses built. Consequently, the great Australian dream of home ownership is vanishing for old and new Australians alike.
15: कोलिशन के प्रस्ताव के मुताबिक हर साल जितने नए घर बनेंगे उतनी ही होगी नेट ओवरसीज माइग्रेशन की सीमा.
16: Tonight, I announce a far-reaching and unprecedented housing policy. It's also an immigration policy that puts Australians first. A coalition will cap immigration numbers based on the number of homes constructed each year. Never again will a government be able to bring in more people than our housing can support.
15: यह ऐलान भारतीय समुदाय के लिए सीधे मायने रखता है जो अब ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा विदेश में जन्मा समूह बन चुका है. टेम्परेरी माइग्रेशन के मामले में एंगस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए सख्त नियमों का ऐलान किया है और स्किल्ड वीजा कैटेगरी को प्राथमिकता देने की बात कही है. भारतीय छात्र ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़े इंटरनेशनल स्टूडेंट समूहों में से एक हैं, इसलिए इन बदलावों का सीधा असर भारत से आने वाले छात्रों पर पड़ सकता है. माइग्रेशन में और भी बदलाव प्रस्तावित हैं, जैसे कि वीजा होल्डर्स के लिए ऑस्ट्रेलियन वैल्यूज स्टेटमेंट का पालन करना अनिवार्य होगा, ना करने पर वीजा कैंसिल हो सकता है. एक सेफ कंट्री लिस्ट भी बनेगी जिसके आधार पर कुछ देशों से आने वाले प्रोटेक्शन क्लेम्स जल्दी खारिज किए जा सकेंगे. हाउसिंग और टैक्स के मोर्चे पर कोलिशन ने लेबर सरकार के कैपिटल गेन्स टैक्स और नेगेटिव गियरिंग में किए गए बदलावों को पलटने का वादा किया है. ये बदलाव उन परिवारों के लिए अहम हैं जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में हिस्सेदारी रखते हैं. साथ ही $5 बिलियन का हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने और इनकम टैक्स को महंगाई से जोड़ने का भी प्रस्ताव है. इन प्रस्तावों के व्यापक असर को समझने के लिए हमने बात की चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर राकेश गुप्ता से. प्रोफेसर गुप्ता समझाते हैं कि इन प्रस्तावों का वास्तव में क्या असर देखने को मिल सकता है.
17: इसमें तीन जो है बहुत ही अहम प्रस्ताव जैसे उन्होंने रखे हैं. एक तो जो है इसको जो हमारा इनकम टैक्स है उसको महंगाई से जोड़ना, वो इकोनॉमिक या अर्थशास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही सही चीज है, परंतु अगर उसको हम इसमें जो है कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो वो जो है 2028-29 से शुरू हो रहे हैं, तो उसका जो है इमीडिएट रिलीफ जो कि आज बात हो रही है कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस की, उसके लिए जो है इमीडिएट रिलीफ कुछ नहीं मिलेगा. दूसरी चीज उसकी जो कॉस्ट है $22.5 बिलियन, वो जो है अभी तक हमने कॉस्ट नहीं किया, क्योंकि जो है जो नॉर्मली जब अपोजिशन अपना जो है प्रस्ताव रखता है तो वो उसके अंदर जो है कॉस्टिंग नहीं दिखाता है, क्योंकि उनको कॉस्टिंग तब तक मिली नहीं होती। तो वो जो है पैसा कहाँ से आएगा उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है।
18: तो
17: दूसरा प्रस्ताव दूसरा प्रस्ताव जो उन्होंने रखा है वो रखा है कि हम जो है अपना ये जो कैपिटल गेन्स टैक्स और नेगेटिव गियरिंग है उसको हम पलट देंगे। अगेन जब ये कैपिटल गेन्स और नेगेटिव गियरिंग जब आई थी उस वक्त जो है उस वक्त की जो सरकार का जो विचार था वो था अलग से कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। आज के जो है कॉन्टेक्स्ट में हम उसको देखते हैं तो उसका विचार अलग है। तो वो जो है एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल है जो कि बहुत से लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि जिनका इन्वेस्टमेंट है, जिनके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं उनको, या जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज खरीदना चाहते हैं उनके लिए जो है ये बहुत ही अट्रैक्टिव चीज है। परंतु इसका जो वाइडर इम्पैक्ट है कि इससे जो है रेंट कम हो जाएगा या इससे जो है अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी, वो बढ़ने की उम्मीद जो है इमीडिएट उसमें नहीं है। और जो तीसरा उनका प्रस्ताव है जो वो है कि माइग्रेशन को हम जो है हाउसिंग से लिंक करेंगे, वो पॉलिटिकली बहुत अट्रैक्टिव है लोगों के लिए। बट अगेन उसका जो है इम्पैक्ट आएगा या नहीं, क्योंकि जो हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी है या हाउसिंग स्टॉक है वो डिपेंडेंट है बाकी चीज़ों पे, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, प्लानिंग रूल्स हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी है, सो उन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि हाउसिंग कितनी बिल्ड होती है। जबकि पॉलिटिकली बहुत ही अट्रैक्टिव है कि अगर घर नहीं है तो हम आने नहीं देंगे लोगों को।
15: वेलफेयर पर भी कोलिशन ने एक बड़ा ऐलान किया है कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो नॉन सिटीजन्स जिनमें परमानेंट रेजिडेंट्स भी शामिल हैं NDIS सहित 17 अन्य वेलफेयर पेमेंट्स के लिए अयोग्य हो जाएंगे।
16: Tonight, I announce that a coalition government will reserve the NDIS and 17 different welfare programs, including JobSeeker, Youth Allowance, and the Family Tax Benefit for Australian citizens only, and save taxpayers billions. My message is this: if you commit to Australia, Australia will commit to you.
15: जॉब सीकर, यूथ अलाउंस, फैमिली टैक्स बेनिफिट्स, ये वो पेमेंट्स हैं जिन पर हजारों प्रवासी परिवार PR पर रहते हुए निर्भर रहते हैं। ग्रीन सेनेटर महरीन फारूकी ने इस ऐलान की तीखी आलोचना की है।
19: It is pathetic that the liberals are willing to sink so low trying to out-racist one nation. Newsflash for Angus Taylor, migrants are entitled to the same safety net as everyone else. Migrants are feeling the same housing crisis, the same cost of living crisis, the same wage crisis as everyone else, caused by Labour and the Liberals' embrace of Trump's forever war and their unwillingness, their complete unwillingness to tax the rich to properly fund social services and public housing.
15: Assistant Minister for Citizenship Julian Hill ne SBS se kaha ki is prastav mein koi dam nahi hai.
20: This is not a serious policy proposition. It's a dog whistle to one nation that's about dividing Australians rather than bringing us together. It's up to the coalition to explain, have they really thought through the potential consequences of this? For example, for Australians living in New Zealand or other countries, what happens when other countries say, okay, well, we'll start treating Australian citizens who've been living and working and paying taxes in our country and take away their family payments and benefits?
15: विपक्ष के इस बजट रिप्लाई पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए ट्रेजरर जिम चार्मर्स का कहना है कि एंगस टेलर ने जो पेश किया है वह एक गंभीर आर्थिक योजना नहीं है।
21: Now, ours is a plan to strengthen the economy. Angus Taylor's is a ploy to stave off one nation. What we saw last night from Angus Taylor was not a budget reply, it was a bin fire. It wasn't a budget reply, it was a bin fire of higher deficits, more debt, more inflation and more division. Angus Taylor's recipe is for higher inflation, bigger deficits, more debt and more division in our society. Now, he was asked last night, immediately after giving this speech, how much would his tax plan cost, and he couldn't say. Now, he won't tell you what he needs to cut to pay for his policies because he can't tell you how much it costs.
15: माइग्रेशन कैप, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए नए नियम, परमानेंट रेजिडेंट्स की वेलफेयर तक पहुंच और प्रॉपर्टी निवेश से जुड़ी टैक्स नीतियां, तो कुल मिलाकर भारतीय ऑस्ट्रेलिया समुदाय के लिए ये प्रस्ताव कई स्तरों पर अहम है। आपका इन प्रस्तावों के बारे में क्या कहना है, हमें जरूर बताएं अपने विचार 0439-799-767 पर। SBS न्यूज से सिडनी लैंग की इस रिपोर्ट को SBS हिंदी पर प्रस्तुत किया स्वाति शर्मा ने, धन्यवाद। इस अंश में प्रस्तुत विचार व्यक्ति विशेष के हैं, SBS ना तो इनसे सहमत है और ना ही असहमत।
1: तो आप सुन रहे थे ये रिपोर्ट कि जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने जो ऐलान किए हैं उसका असर प्रवासी समुदायों पर क्या पड़ेगा, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं अवश्य हमें बताएं 0439-799-767 पर। इसके अलावा आप ये भी हमें बताएं कि भारत में वो कौन सी जगह है जिसे अरब सागर का मोती कहा जाता है। आपके संदेशों की मुझे प्रतीक्षा है। और अब एक समय हुआ है तो एक छोटे से अंतराल का, मिलती हूँ इसके बाद में।
0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
18: Starting a new life in Australia isn't easy.
10: A lot of companies have rejected me.
11: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
18: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
12: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
22: SBS News इन डेप्थ पॉडकास्ट, देश और दुनिया भर के समाचार जो अहमियत रखते हैं, सुनिए SBS News इन डेप्थ आपके पसंदीदा पॉडकास्ट ऐप पर या sbs.com.au/audio पर जाएं।
23: क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर, हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है।
18: Starting a new life in Australia isn't easy.
10: A lot of companies have rejected me.
11: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
18: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
1: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम आगे बात कर रहे हैं एक ऐसी जगह की, एक द्वीप है भारत का, एक द्वीप जिसे अरब सागर का मोती कहा जाता है। तो आप सोचिए कि वो द्वीप कौन सा है, उसके बारे में हमें अवश्य लिखें। वैसे हमारे श्रोता ब्रिस्बेन से कैलाश जी ने तो अपना उत्तर हमें लिख भेजा है। चाहूँगी कि आप भी इसके बारे में सोचें और हमें लिखें। और इस अंतराल से पहले आप एक रिपोर्ट सुन रहे थे जिसमें विपक्ष के नेता एंगस टेलर ने कुछ बड़ी बड़ी घोषणाओं की जो बात की है उसका प्रवासी समुदायों पर क्या असर पड़ सकता है, इसके बारे में आपने जो रिपोर्ट सुनी उस पर भी आपके क्या विचार हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए बात करते हैं कि ये जो महंगाई हुई है, बढ़ती लागत का जो ये दौर है, उसमें दूध जैसी रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ भी महंगी हो गई है। अब
15: सुपरमार्केट्स में जो होम ब्रांड दूध है उसकी कीमत में बढ़ोतरी की गई है, जिससे कहा किसानों को और मिल्क प्रोसेसर्स को सहयोग देने की वजह से जोड़ा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि इसका असर ग्राहकों पर, घरेलू बजट पर, किसानों पर क्या पड़ेगा। तो इन्हीं पहलुओं को समझते हुए एक रिपोर्ट है जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं नबील हसन, सुनिए ये रिपोर्ट। लेकिन इस रिपोर्ट से पहले मैं चाहती हूँ कि कुछ एक गाना सुनते चलते हैं। गाना किस लिए? क्योंकि आज है परिवार दिवस, नेशनल फैमिलीज डे, जो यूएन की तरफ से, और ये पूरा सप्ताह जो है वो नेशनल फैमिलीज वीक है। तो सोचा कि पहले परिवार की बात करते चलें, ये गाना सुनते चलते हैं।

0: तो श्रोताओं, ये गाना हम सुन रहे थे और उसके साथ हम इस दिन को भी याद कर रहे हैं, यानी जो खास तौर से परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है, परिवारों को एक दूसरे से जुड़ने और समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को याद करने का ये अवसर है। और ये भी है कि बच्चों के पालन पोषण, सहयोग और समाज में परिवार की क्या भूमिका होती है, इसको पहचानते हुए इस दिन को हम मनाते हैं। अब जब पालन पोषण और बच्चों के सहयोग और समाज की बात आती है तो उसमें महंगाई की बात तो आ ही जाती है, जिसकी बात मैं अभी इस गाने से पहले कर ही रही थी। तो कई चीज़ें हैं जो महंगी हो गई हैं, सुपरमार्केट में होम ब्रांड दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। तो आइए जानते हैं इस अगली रिपोर्ट में कि इसका घरेलू बजट पर क्या असर पड़ेगा। ये रिपोर्ट आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं नबील हसन।
1: दूध जो हर घर की रोजमर्रा की जरूरत है, लेकिन जब इसी जरूरी चीज की कीमत बढ़ती है तो असर सिर्फ रसोई के बजट पर नहीं बल्कि खेतों और डेयरी उद्योग तक भी पहुंचता है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के कई बड़े सुपरमार्केट्स में होम ब्रांड मिल्क की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। उदाहरण के तौर पर 3 लीटर मिल्क कैन, जिसकी कीमत पहले लगभग $4.50 थी, अब बढ़कर $5 के ऊपर पहुंच गई है। कंपनियों का कहना है कि ये कदम डेयरी फार्मर्स और मिल्क प्रोसेसर्स को बढ़ती लागत के दौर में सहयोग देने के लिए उठाया गया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये बढ़ी हुई कीमत ग्राहकों पर अतिरिक्त बोझ है या किसानों के लिए राहत, और इसका डेयरी सेक्टर के भविष्य पर क्या असर हो सकता है। इन्हीं सब पहलुओं पर आज हम इस रिपोर्ट में नजर डालेंगे। SBS हिंदी पर मैं हूं नबील हसन। इस मुद्दे पर SBS हिंदी ने वूलवर्थ से संपर्क किया। उनके जवाब का हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार है।
2: हम जानते हैं कि बढ़ती लागत का दबाव कई ऑस्ट्रेलियाई किसानों और सप्लायर्स को प्रभावित कर रहा है, जो ईंधन, उर्वरक और पैकेजिंग जैसे बढ़े हुए खर्चों का सामना कर रहे हैं। हमारे डेयरी किसानों को बढ़ती लागत से निपटने में मदद करने के लिए हम सीधे स्रोत से जुड़े किसानों को हमारी तय दूध खरीद कीमत के अतिरिक्त लगभग 5 सेंट प्रति लीटर का अस्थायी अतिरिक्त भुगतान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम आने वाले सप्ताह में सीधे स्रोत से जुड़े किसानों को एक मुश्त राहत भुगतान के रूप में कुल $10 लाख की अतिरिक्त सहायता भी प्रदान कर रहे हैं। ये अब से अप्रैल के अंत तक सप्लाई की गई मात्रा पर 5 सेंट प्रति लीटर से अधिक के बराबर है। हमें ऑस्ट्रेलियाई किसानों का समर्थन करने पर गर्व है और हम इस उद्योग के बेहतर भविष्य में निवेश कर रहे हैं।
1: हमने कोल से भी इस विषय पर प्रतिक्रिया मांगी। उनसे मिले जवाब का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत है।
3: हम जानते हैं कि बढ़ती महंगाई और ईंधन की कीमतों के कारण

0: A new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS Audio app
0: and SBS On Demand.
3: को लेकर सहयोग की मांग के जवाब में हमने वूलवर्थ्स ओन ब्रांड मिल्क की रिटेल प्राइस बढ़ाई है ताकि इसका लाभ मिल्क प्रोसेसर्स और उनसे जुड़े डेयरी किसानों तक पहुंच सके। इस चुनौतीपूर्ण समय में हमारा ध्यान सही संतुलन बनाए रखने पर है ताकि किराने का सामान ग्राहकों के लिए किफायती रहे और हमारे सप्लायर्स भी अपना काम जारी रख सकें।
4: आइए अब आगे बढ़ते हुए इस मुद्दे को बेहतर समझते हैं और बात करते हैं बिपिन शर्मा से। डेयरी और फूड इंडस्ट्री से जुड़े बिपिन जी, हाल ही में कई सुपरमार्केट्स में होम ब्रांड मिल्क की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर किसानों और मिल्क प्रोसेसर्स पर क्या असर पड़ सकता है, इस पर अपनी राय साझा कर रहे हैं।
5: I'm happy कि अगर आप बोल रहे हैं कि इसका जो डायरेक्ट जो भी है जो प्राइसिंग है वो फार्मर्स को जाएगी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ इन माय ओपिनियन कि जो डेयरी फार्मर्स है वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं मिल्क प्राइसिंग की वजह से। तो आज की डेट के अंदर जो फार्म गेट प्राइस है 120 to 130 डॉलर्स में वेरी करता है फार्म गेट से, ठीक है ना। तो उसके ऊपर आप देखिए कि वहाँ से ट्रांसपोर्ट लेके भी जाएगा, उसका कॉस्ट बढ़ेगा, फिर वो प्रोसेस करेंगे, फिर उसको बॉटल करेंगे। तो मुझे तो अभी भी समझ नहीं आता 450 में कैसे मैनेज करते हैं, टू बी ऑनेस्ट विद यू। बट आई थिंक मैं मतलब हर चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है सर, एनर्जी, बट दिस वॉज लॉन्ग ओवर ड्यू आई थिंक कि जो है होम ब्रांड का जो मिल्क का प्राइस है ओवरली सब्सिडाइज है। आई डोंट नो व्हाट्स द रीजंस, मैं इसमें टेक्निकलिटी में नहीं जाऊँगा कि पर, लेकिन मैंने आपको मैथ्स बता दिया कि इट डजंट मेक एनी सेंस, क्या नहीं कि कैसे हो सकता है। अलॉन्ग द चेन सबने पैसा बनाना है, सबना पैकेजिंग का कॉस्ट है, अगर सारा कुछ आप ऐड करेंगे तो दैट यू नो डजंट ऐड अप। तो ठीक है, तो आई थिंक बिकॉज फार्मर्स के लिए भी देखिए ना, सारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बढ़ गया है, फिर आपका डीजल की कॉस्ट इज गॉन वेरी हाई। बट अगर आप कंपैरेटिवली बाकी प्रोडक्ट्स को देखें, जो कि हम और प्रोडक्ट्स भी हैं जो कंज्यूम करते हैं, तो कंपैरेटिवली मिल्क प्राइसेस हैडंट मूव दैट मच इन माय ओपिनियन।
4: विपिन जी, आज के समय में डेयरी और फूड बिजनेस के लिए जो राइजिंग कॉस्ट हैं जैसे फ्यूल, पैकेजिंग और दूसरे खर्चे, इनको मैनेज करना कितना मुश्किल हो रहा है?
5: हाँ जी बड़ा मुश्किल हो रहा है और इट्स वेरी डिफिकल्ट, बड़ा मुश्किल लग रहा है कि इनको कैसे प्राइस को पास ऑन करें आगे, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि कंज्यूमर को भी पिंच होता है फिर आगे जो है ना। सो आई थिंक एवरीवन इज सॉर्ट ऑफ सफरिंग अलोंग द चेन, टू बी ऑनेस्ट विद यू। सो उसको सस्टेन करने में लॉट ऑफ पीपल आर फेसिंग लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, क्योंकि द वे द एनर्जी प्राइसेस आर आप देख ही रहे हैं, तो दैट अफेक्ट्स एवरीथिंग अलोंग द लाइन, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो फिर सैलरीज भी होती हैं, इंटरेस्ट रेट्स भी होते हैं, सो एवरीथिंग अफेक्ट्स, यू नो दैट्स द रीजन, यू नो द प्राइसेस वेयर दे आर। और अभी भी जितने भी मुझे लगता है स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं, वो उन्होंने प्राइस रीजनेबली होल्ड करा हुआ है, बट अदरवाइज कॉस्ट्स हैव गॉन कंपैरेटिवली लॉट हायर।
4: अच्छा, कस्टमर्स के नजरिए से देखें तो क्या लगता है आपको कि इस प्राइस राइज का उनके डेली कंजम्पशन पर भी कोई असर दिख सकता है?
5: सर वो दिखेगा ही, क्योंकि देखिए ना, वो जो फार्मर जो प्रोड्यूस कर रहा है मिल्क, उसकी भी तो कॉस्ट ऊपर गई है। एज इट इज मैं बता रहा हूँ कि जो फूड जो मिल्क का प्राइसिंग है दैट्स एक्चुअली वेरी वेरी रीजनेबल कंपेयर टू लॉट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, चाहे आप पानी ले लें, विस्की ले लें, बियर ले लें, कॉफी ले लें, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, देयर हैज बीन लॉट मोर इंक्रीज। मिल्क में मूवमेंट बहुत कम है, आई डोंट नो एवरीवन, हर आदमी जो है मिल्क प्राइस को देखता है बिकॉज इट्स डेली कंज्यूम्ड। तो अगर आप देखें स्टैटिस्टिक देखें, कितने फार्मर्स जो हैं दे आर गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, यू नो दे डोंट वांट टू कंटिन्यू डूइंग दिस फार्मिंग, दे आर नॉट मेकिंग मनी, दे आर स्ट्रगलिंग, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। आई अंडरस्टैंड ये, आई डोंट थिंक सो फार्मर्स हैव बीन प्लेइंग एनी रोल इन इंक्रीजिंग दिस प्राइसिंग, दे हैव बीन ऑलवेज बीन स्ट्रगलिंग फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ।
4: ऐसे समय में आपके कई देशों के अनुभव को देखते हुए, क्या ऐसे कोई सुझाव हैं जिनसे फार्मर्स या डेयरी इंडस्ट्री को और मदद मिल सकती है?
5: देखिए मैं इतना तो इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं बोल सकता क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है, बट ये है कि फार्मर्स देखिए, आपको मैं इंडिया का एग्जांपल देता हूँ। आप इंडिया में आप जाइए, क्योंकि मैं भी वहीं पे मैंने अभी फैक्ट्री खोली है, वहाँ पर जो फार्म गेट प्राइसिंग है 60 रुपये है पर लीटर, ठीक है। तो वहाँ पे बिकॉज बफलो मिल्क है, फैट ज़्यादा होता है, तो आपको 5 लीटर में

0: एक जो है किलो पनीर बनता है, ठीक है। तो वो उसका घर में जो आपका दूध का कॉस्टिंग है 300 रुपये आया, और वहां पर लोग 300 रुपये किलो पनीर बेच देते हैं, और वही फिर लोग कंप्लेन करते हैं यार बहुत अडल्ट्रेशन है, अच्छा नहीं मिल रहा है या ये नहीं मिल रहा है। तो अगर आपने क्वालिटी मेंटेन करना है तो कुछ है तो वी हैव टू सी कि अभी किसका कितना कॉस्टिंग होता है, कैसे होता है। तो जो भी प्राइसिंग है रीजनेबल है, दे आर नॉट राइट ओवर द टॉप इन माय ओपिनियन। जैसे अब यहाँ पर तो बड़े स्टैंडर्ड्स आए हैं, एवरीथिंग इज वॉश प्रॉपरली, हर बंदा कोई हेरा फेरी का सिस्टम नहीं है यहाँ पर। और आई थिंक कि जो मिल्क का प्राइसिंग है वो मेरे हिसाब से तो अभी तक ठीक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ। हुआ है बाकी कॉस्ट में, हुआ है पैकेजिंग में ज़्यादा, बल्कि हमें प्रॉब्लम हुई है ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम हुई है। तो मिल्क प्राइस इज स्टेइंग ऑलमोस्ट ओके, बट उसके जो मिल्क प्राइसिंग को आप होम ब्रांड से नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि होम ब्रांड पहले ही बहुत सस्ता था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इसको बेच पा रहे हैं ये जो सुपरमार्केट्स हैं, हाउ दे आर एबल टू सेल दैट। या तो उनका पॉलिसी होगा कि मिल्क को हम सब्सिडाइज करते हैं, बाकी चीजों में पैसा बनाते हैं, सो आई रियली डोंट नो, वो उनका यू नो दैट्स हाउ दे ऑपरेट, आई डोंट नो हाउ दे ऑपरेट।
1: तो ये थे विपिन शर्मा, जिन्होंने हमें इस मुद्दे पर अपनी राय दी, बढ़ती कीमतों, किसानों की चुनौतियों और ग्राहकों पर असर के बीच ये बहस आगे भी जारी रहने की संभावना है। SBS हिंदी पर ये रिपोर्ट आपके लिए प्रस्तुत की नबील हसन ने। इस ऑडियो पॉडकास्ट में व्यक्त किए गए विचार व्यक्तिगत हैं, SBS ना तो इनसे सहमत है और ना ही असहमत।
2: तो श्रोताओ, क्या आपके लिए भी महंगा दूध परेशानी का कारण है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? और बताती चलूं कि हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं पीयूष जी, और उन्होंने जवाब भी लिख भेजा है कि अरब सागर का मोती कौन सा द्वीप है। हम द्वीप की बात कर रहे हैं, द्वीप समूह की नहीं। तो ये दूसरे श्रोताओं के लिए मैं बताना चाहती थी। और परिवार दिवस पर उन्होंने अपनी पसंद भी लिख भेजी है। तो पीयूष जी, आप कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, देखिए अगर संभव होगा तो आपकी पसंद अवश्य शामिल करूंगी, नहीं तो कल यानी शनिवार के कार्यक्रम में उसको शामिल करूंगी। ये पूरा सप्ताह ही परिवार के लिए समर्पित है। और बात करते हैं आगे कि कौन सी जगह है, लेकिन अभी समय हुआ है अंतराल का।
3: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
8: SBS हिंदी हर समय उपलब्ध है, जब भी आप चाहें किसी भी मोबाइल पर हमारे पॉडकास्ट बिल्कुल मुफ्त सुनें। sbs.com.au/hindi पर जाएं या SBS ऑडियो ऐप डाउनलोड करें।
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
2: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम, और आपके साथ हूँ मैं अनीता बरार। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा होता है ना कि जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो जैसे नई अनुभूतियों से हमारे मन पर नए रंगों के चित्र बन जाते हैं। नए लोग, नई जगह, नई संस्कृतियाँ। कभी प्राचीन इमारतों को देखना, विरासत और संस्कृति से जुड़ना, कभी पहाड़ों की मौन ऊंचाइयों में या समुद्र की लहरों के संगीत में डूब जाना। यानी हर जगह की अपनी छाप बनती है हमारे मन पर। तो आइए आज जानते हैं भारत के एक और स्थल के बारे में। हो सकता है कि आप वहाँ गए हों या फिर कभी जाने का अवसर मिले। तो आइए चलते हैं दीव की तरफ। दीव यानी सूर्य, रेत और समुद्र का संगम। लहलहाते खजूर के पेड़ और अरब सागर की बलखाती लहरें बस इस द्वीप की सुंदरता में चार चांद लगा देती हैं। सौराष्ट्र प्रायद्वीप में जूनागढ़ के पास किसी जमाने में पुर्तगालियों की एक छोटी सी बस्ती हुआ करती थी, नाम था दीव। और अब केंद्र शासित दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप, जो आज है एक अनोखा पर्यटन स्थल। ये एक खाड़ी से मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। दीव के उत्तर में चासी नदी है, जबकि बाकी तीन ओर अरब सागर है। दो पुल इसे मुख्य भूमि से जोड़ते हैं। ऐतिहासिक विवरण में कहा जाता है कि दीव का पहला शासक एक राजपूत था जिसका नाम जालंधर था, लेकिन 1380 में हमलावरों ने इस पर अधिकार कर लिया। यहाँ पर है एक किला जो यहाँ का मुख्य आकर्षण है। इस किले का निर्माण 1535 और 1541 के बीच में एक रक्षा समझौते के बाद हुआ। बताया जाता है कि मुगल राजा हुमायूं ने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह पर हमला किया, तो ये समझौता बहादुर शाह और पुर्तगालियों के बीच में हुआ। किले की स्थिति और बनावट से उन शासकों की रणनीतिक चतुराई का पता चलता है। किला एक ऐसी चट्टान की तरह है जिस पर हमला करना मुश्किल था। ये तीन तरफ से तो समुद्र से घिरा है और एक ओर जब ये भूमि से जुड़ता है उस पर भी एक खाई बनती है। 16वीं शताब्दी में समुद्र यात्राओं में यूरोप के देश पूर्व में व्यापार की संभावनाएं तो तलाश कर ही रहे थे। इन्हीं देशों में पुर्तगाल भी शामिल था और वहां के व्यापारी 1510 में दीव आए थे, लेकिन ये पूरी तरह से पुर्तगाली शासन के अंदर 1543 में ही आया। 1945 में किले का पुनर्निर्माण किया। किले के प्राचीर पर कांसे और लोहे की पुर्तगाली तोपें आज भी लगी हुई हैं। किले के कोनों में इस्तेमाल नहीं किए गए गोले अभी भी पड़े हुए हैं और किले की चार दीवारी के अंदर दो दीप स्तंभ भी बने हुए हैं। चूंकि यहाँ पर पुर्तगालियों का राज हो गया तो पुर्तगालियों ने एक गिरजाघर का निर्माण भी किया जो सेंट जेम्स को समर्पित है और किले की दीवार से सटा हुआ है। पुर्तगाली किले की सुरक्षा को लेकर संतुष्ट नहीं थे तो उन्होंने समुद्र के बीच में एक चौकी और चट्टानी ढांचे पर लाइट हाउस का निर्माण भी कराया। जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो इसे पानी कोठा कहते हैं। दीव से पानी कोठा तक पहुंचा भी जा सकता है मोटर बोट से। सूर्यास्त के समय पर पानी कोठा से जो दीव का किला दिखता है वो बहुत ही सुंदर दिखता है, क्योंकि एक ओर सूरज समुद्र में डूब रहा होता है तो पानी कोठा रोशनी से जगमगा उठता है। ये एक वो दृश्य है जिसको शब्दों में बयान करना संभव नहीं है। अच्छा, पुर्तगाल की संस्कृति का प्रभाव दीव के जीवन में कई पहलुओं में दिखाई देता है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर राजस्थानी और मुस्लिम प्रभाव भी देखा जा सकता है। यहाँ का जो जलंधरनाथ का मंदिर है वो राजपूत शासक को समर्पित सबसे पुराना मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पर गुजराती शैली में नगर सेठों की हवेलियाँ हैं। जामा मस्जिद भी है जो पुर्तगालियों के आने से पहले की संस्कृति की याद दिलाती है। अब दीव की जो गलियां हैं और सड़कें हैं वो यूरोप के किसी कस्बे की तरह लगती हैं। असल में यहाँ पर पुर्तगाली और गुजराती वास्तुशिल्प का मिला जुला रूप है। वैसे जिन इमारतों को यहाँ यानी दीव का गौरव कहा जा सकता है उसमें है सेंट पॉल और सेंट थॉमस गिरजाघर की इमारतें और सेंट फ्रांसिस असीसी के गिरजाघर का टावर। गॉथिक शैली में सेंट पॉल गिरजाघर का निर्माण 1610 में किया गया और आवर लेडी ऑफ इमैक्यूलेट कॉन्सेप्शन के नाम से विधिवत रूप से उपासना के लिए इसे खोला गया। नायडा गुफाएं भी द्वीप का एक प्रमुख आकर्षण है। ये गुफाएं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हैं। इन गुफाओं की दीवारों पर विभिन्न चित्रों और नक्काशियों के साथ मानव सभ्यता के विकास के युगों की कहानी लिखी गई है। प्राचीन और मध्ययुगीन काल में द्वीप पर कई राजाओं और राजवंशों ने शासन किया। बाद में ये पुर्तगाली कॉलोनी बन गया और 1961 में इसे गोवा के साथ ही एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। उसके बाद में 1987 में इस द्वीप को गोवा से अलग कर दिया गया। और दीव का मुख्य उद्योग है नमक बनाना और मछली पकड़ने का काम। अब दीव की बात करें और वहां पर बीचेस की बात ना हो तो लगेगा कि दीव की बात अधूरी रह गई। जलंधर बीच, चक्रतीर्थ बीच, गोमतीमाला बीच और नागोवा। नागोवा का बीच घोड़े की नाल की तरह का बना हुआ है और इसकी गिनती भारत के सबसे सुंदर समुद्र तटों में होती है। ये शांत पानी वाली नीली खाड़ी में स्थित है। यहाँ पर लोग स्विमिंग के लिए भी आते हैं। यानी दीव में वो सब उपलब्ध है जिसकी पर्यटकों को तलाश रहती है। अपने शांत और सुकून भरे माहौल की वजह से ये बहुत ही मनमोहक सी जगह है और तभी इसे अरब सागर का मोती कहते हैं। तो श्रोताओं, द्वीप के बारे में ये जानकारी आपको कैसे लगी आप मुझे अवश्य बताइएगा। और चूंकि परिवार दिवस की बात है तो आइए कुछ परिवार को समर्पित ये गाना सुनते चलें। आपको तो याद ही है ना कि पारिवारिक फिल्में बनाने के लिए एक प्रोडक्शन हाउस है जो खास तौर से जाना जाता है। याद है आपको वो प्रोडक्शन हाउस? लिख भेजिएगा मुझे।

जी, और जब परिवार साथ में होता है तो खुशियों का जो माहौल बनता है उसकी तो बात ही अलग है। आप भी अपने परिवार के साथ एक दूसरे के साथ जुड़कर समाज में महत्वपूर्ण भूमिका की तरफ बढ़ते ही हैं, तो आइए क्यों ना परिवार के साथ मिलकर कुछ ऐसा ही करते चले।

श्रोताओं, आपको इसी गाने के साथ छोड़े जा रही हूँ। आपसे मुलाकात करूंगी कल के कार्यक्रम में। हेमलता जी, आपका भी संदेश मिला है, अच्छा लगा आपके साथ जुड़कर। तो अभी अनीता बरार का प्यार भरा नमस्कार और परिवार दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं।

0: हमारी बीट पे डांस करने के लिए धन्यवाद. खाना खाके जाइएगा.
1: Your news from here
2: and hits from home. SBS South Asian.

लकीर हूँ, जिन हाथों ने है मुझको दबाया उन हाथों की तो देख बेटा मैं जंजीर हूँ। अमीरों वाला ख्वाब चाटो इनकी धूल, दिखने में सुंदर ये कांटे वाले फूल।

अमीर है खुश क्योंकि गरीबों की लगी सेल, गलती है किसकी और बदले में कौन चाहता जेल, पन्ना है चीता या रहना तो मैं बस एक स्नेल, मजबूर हूँ कभी ना होती प्लेटफुल, हरकतें मानेगा समाज मेरी शेमफुल, अकेला ही करूँगा मैं सारा वेट।

जैसी आ रही जैसी होशियारी ये फिजूल है, तेरा ख्याल ठेकेदार है तू वक्त का, बदल के रहता है ये वक्त का उसूल है। हरकतों पे कब तलक मेरी नजर रखेगा तू, करते करते पहरेदारी एक दिन थकेगा तू। मैं मगर नहीं थकूंगा, फैसला ये है किया, गलत को भी सही तरह से करने का निश्चय किया।

0: ठोकरे खा खा पता चला, फिदा जिस पे होते थे, एक सांप हमारा यार था, हम सांप के साथ सोते थे।
1: Weekend vibes. Your weekend party mix. Desi Dance Party on SBS South Asian.

दिल हिया सुनिए न करे हंस खेत।

ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਗਈ ਆ।

0: SBS South Asian. Your news from here and hits from home.
1: ओ चन्नती कुड़ी, ओ चन्नती कुड़ी।

नीतू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकाली पंग होगी।

जैसे मैं खेल रहा लुका छुपी और छुप गया मार्स पे और मुझे कोई देख नहीं रहा। ये चोरी किया मैंने रानी हार को बनके मिस्टर इंडिया और मुझे कोई देख नहीं रहा। टेंशन सारी छोड़ दी ओए, आज कमी ना हो शोर की ओए, हाँ मुझे डांस आया आया बड़ी जोर से आज।

बच्चन बच्चन बच्चन बच्चन पांडे।

खुशी के मैं बांटू के तुझे भी कम ना रहे। जो ढूंढने जाओगे मुझसे अच्छी वजह तो ढूंढ ना पाओगे प्यार ऐसा उसमें नहीं शक मुझे। But I want you to stay।

प्यार कम ज्यादा झगड़ा करे हैं ऐसे तड़पाए क्यों ईगो तो दिखाए क्यों मछले है जैसे कुनकन की मछली स्टाइल झूठा है तेवर है।

0: SBS South Asian.
1: Mixing in the house.

दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

0: Turn it up.
1: Your